0: नया नेपाल को नया आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।
1: तुझे चाहा था इस तरह, गर्मी में कोई बारिश को चाहे जिस तरह, और जो इन आंखों में बारिश है सिर्फ तेरी साजिश है।

ना जगह बदनाम कर दिया तूने। चलो अच्छा है, खोई तो दिल से एहसान कर दिया तूने।

0: करने का?
1: अरे बोलने से पहले कुछ तो सोच लो बेगम।
0: अरे इसमें सोचना क्या है, अगर इस पांच के भरोसे बैठे रहे ना तो इस आंगन में बच्चे की किलकारियां कभी नहीं गूंजेगी। आप तो बस रियाज के लिए दूसरी लड़की तलाशना शुरू कीजिए।